0: आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनिवालो, आप रेडियो ज़ेटोजिक हिंदी कांड को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोएना न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर अजीज़ वादोलत।

इसके अलावा सम्मेलन के ढांचे के बेहतर सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ साथ विशेष प्रदर्शनियों की योजना बनाई जाती है, जिससे मेहमानों को तजिकिस्तान के इतिहास, सांस्कृतिक और पर्यटन क्षमता से अधिक परिचित होने का अवसर मिलता है।

कृषि क्षेत्र भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। किसानों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिला और नए भूमि कृषि चक्र में प्रवेश कर गए। पूजन गफूरोव सिपतामेन जबू रसूलोव और अन्य क्षेत्रों में नए बगीचे और अंगूर के बाग बनाए गए और कपास पहल अंगूर सब्जियों और पहलों का उत्पादन बढ़ गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी और नए कृषि तकनीकी विविधियों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि हुई। आज सौदा क्षेत्र के कृषि उत्पाद ने केवल घरेलू बाजार बल्कि विदेशी बाजारों में भी आपूर्ति करते हैं। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों के उल्लेखनीय की उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है और सौदा प्रांत के समन्वित निवासी आगे बिहार राष्ट्र के संस्थापक शांति और राष्ट्र एकता के संस्थापक ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मली रहमान के निर्देशों और मार्गदर्शन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ताजिकिस्तान के स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ को भव्य और सम्मानजनक रूप से मनाने तथा निर्माण और विकास कार्यों को और अधिक विस्तार देने की दिशा में भी व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के लोग देश पाकिद और राष्ट्र गौरव की भावना के साथ मातृपुर मातृभूमि के विकास आधुनिक भवनों के निर्माण जीवन स्तर में सुधार तथा विभिन्न क्षेत्रों के उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज निर्माण और विकास कार्य पूरे क्षेत्र में जारी है, जिससे शहरों और जिलों की सुंदरता और आकर्षण और अधिक बढ़ता जा रहा है। आज सौदा प्रांत देश के समृद्धि और विकसित क्षेत्रों में से एक बन गया है। क्षेत्र के निवासी अपने समर्थ्य कार्य और देश बाकी की उच्च भावना से ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रगति में बहुमूल्य योगदान देते हैं। आज़ादी के 45वीं वर्षगांठ की उपलब्धियों दिखाती है कि ताजिक लोग एकता के साथ किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ वशोई रेडियो ओजे ताजिक पेरे सुनने वालों हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हैं, हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोएरा न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर अजीज़ वादौलत।

कृषि क्षेत्र भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। किसानों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिला और नए भूमि कृषि चक्र में प्रवेश कर गए। पूजन गफूरोव सिपतामेन जबू रसूलोव और अन्य क्षेत्रों में नए बगीचे और अंगूर के बाग बनाए गए और कपास पहल अंगूर सब्जियों और पहलों का उत्पादन बढ़ गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी और नए कृषि तकनीकी विविधियों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि हुई। आज सौदा क्षेत्र के कृषि उत्पाद ने केवल घरेलू बाजार बल्कि विदेशी बाजारों में भी आपूर्ति करते हैं। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों के उल्लेखनीय की उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है और सौदा प्रांत के समन्वित निवासी आगे बिहार राष्ट्र के संस्थापक शांति और राष्ट्र एकता के संस्थापक ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मली रहमान के निर्देशों और मार्गदर्शन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ताजिकिस्तान के स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ को भव्य और सम्मानजनक रूप से मनाने तथा निर्माण और विकास कार्यों को और अधिक विस्तार देने की दिशा में भी व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के लोग देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना के साथ मातृभूमि के विकास आधुनिक भवनों के निर्माण जीवन स्तर में सुधार तथा विभिन्न क्षेत्रों के उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज निर्माण और विकास कार्य पूरे क्षेत्र में जारी है, जिससे शहरों और जिलों की सुंदरता और आकर्षण और अधिक बढ़ता जा रहा है। आज सौदा प्रांत देश के समृद्धि और विकसित क्षेत्रों में से एक बन गया है। क्षेत्र के निवासी अपने समर्थ्य कार्य और देशभक्ति की उच्च भावना से ताजिकिस्तान गणराज्य के प्रगति में बहुमूल्य योगदान देते हैं। आज़ादी के 45वीं वर्षगांठ की उपलब्धियों दिखाती है कि ताजिक लोग एकता के साथ किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ वशोई रेडियो ओजे तोजेक पेरे सुनने वालों हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हैं, हमारे रेडियो के साथ रहिए।